0: Sekerat Sati Kolejo Nosa Mutu Chilzans Kujita.
1: Patekki Nosa Tathadiru Sajari, Haat Chodri Tathadjana Sajari, Asurki Seva Nakaan Khatiru Kishisakye Kata Dwara Chilzans Kajari.
0: 24 Ghanta Digital X-Ray, Video X-Ray, ECG Tathah, Iko Mutu X-Ray Seva Uprakthava, Shubhida Sampanna Lekka Seva Uprakthava. Paralysis Uto Mubangwina Nosa Tathakwila Khanwara निचलना बिरामी को नकला फिजियो थेरापी तथा एकुपेंडर थेरापी विधि में से उपचार कर दी था।
1: नशा जब भी बिरामी अंकन के बिना प्रेशर फिजियो थेरापी तथा एकुपेंडर थेरापी से सफल उपचार कर दे।
0: तो किसी को तो एम्बुलेंस का व्यवस्था कर दी था। असहाय नागरिक या कोई महिला अनाथ बाल बालिका अपंग ज्येष्ठ नागरिक होकर उन्हें सेवा में 10% छूट की व्यवस्था कर दी था। उसी अस्पताल प्रणाली मास्टरी शाखा पर मास्टरी बढ़ दिया
1: सम्पर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 पास करिए। फोन को लेकर

0: करेगा अनुभव की कमी हो पढ़ाई में ध्यान देना समस्या देना
1: रक्ता पता मुझे पचला का साग पात दाल गुड़ियारा आरा मछली शिकार और फल फूल आयुर्वेदिक खाना नियमित रूप में खाई
0: जंक फूड कम करी संतुलित

0: सब चुनित खाना खाई, व्यायाम सब न करी, धूम्रपान वगैरह मशीन टू न रही, तनाव भरा नियंत्रण करी, आज निर्णय कार्य जीवन अतरा निशाना रोगों से बाजी स्वस्थ जीवन अपनाई। रेडियो गुरुबाबा एफएम का सहकारी व स्वास्थ्य कार्यालय बोर्डिया से दरई पुजारी सलीस।
1: अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुसार नेपालमा

0: सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति प्रतिबद्धता घटी वैवाहिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में वृद्धि यहां स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पहल से कौशल्य अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध करा दी अस्पताल से सेवा 24 घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्यार छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच सीधा प्रत्येक दिन नशा तथा निम्न सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा पेरालाइस शिशुको मुख बाँक महिना नशा डाकुलक हात द्वारा निचलना बिरामीहरू सफल उपचार करे 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था करेगा असहाय नागरिक एक महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक होकर सेवा में 10% छूट के व्यवस्था करेगा कौशल्य अस्पताल प्रणाली बांसगढ़ी शाखा 5 बांसगढ़ी बर्दिया पुरानी पेट्रोल पंप दक्षिण बाजार
1: संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 संसदीय पूर्व 14 नंबर

0: मिला तीस रुपए टटका लगना तो कलेजा अनुभव की कमी ना हो पाए तो ध्यान दीजिएगा उसको नशे लेना
1: रक्तर पता मुझे बोझक लाग काइस खाक पाक दाल पूरी गहरा आरा मच्छी शिकार और फल फूल आयुक्त खाना नियमित

0: प्रसंगा में इतना आयरन कैल्शियम खानी जाए स्वस्थ ताकि सुरक्षित परिवार
1: स्वास्थ्य बारे में

0: देखियो तो बैंक समिति का जिला संचालन इन्हें जानकारी देगी। इस थाने विभाग थाना घर विभाग पहुंचे सरकार साज प्रभाव कार्य समाधान कर समिति सक्रिय लगभग निर्वाची कार्यक्रम में सहभागी हुआ। बैंक समिति अलग इस पक्ष पारदर्शी हो विश्वसनीय बनाए जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचार माध्यमों से समन्वय तथा सरकार पहला सुधार के लड़ा समिति रहना तीन में महिला बाल बालिका तथा पाछा पारदर्शी समुदाय का न्याय में पहुंच विस्तार डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली लागू कानूनी सचेतना अभियान में थप प्रभावकारी बनेगा योजना के सार्वजनिक करगा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रक्रिया वितरण केन्द्र और विद्युत मीटर वितरण सेवा अस्थायी रूप में बंद करने चले तथा वितरण केन्द्र से जारी कागज सूचना अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 का मीटर संबंधी हिसाब मिलान तथा खाता बंदी का कार्य संपादन से असार 22 गते से श्रवण 15 गते समय नवो विद्युत मीटर वितरण सेवा स्थापित कई जिला को प्राधिकरण उपलब्धिमा लघु मीटर चढ़ान तथा ऐना सेवा ग्राहक अंश उपलब्ध कराईनी चेतना चले तथा नियमित प्रशासन के तथा लेखा संबंधित कार्य अनव्यवस्थित बनाए सेवा कुछ समय का लाभ प्राप्त स्पष्ट पार्टी बात एक मसी सेवा ग्राही में पूरा चेतना असुविधा प्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रक्रिया वितरण केन्द्र छमा हासिल करते निर्धारित अवधि 5 अरब मीटर वितरण सेवा भेटू नियमित रूप में संचालन करना चलेगा।
1: पांच वर्ष पछाड़ी में सार्वजनिक विकास निर्माण प्राकृतिक तत्व को सुधार करने विधि में सरकार कल्याण तथा घरेलू बाट सुनने समय में जनसंख्या जुटा करो वर्षायाम में कर्णाली प्रदेश में पैला पहिरो के कारण सड़क अवरूद्ध विभेद जनजीवन प्रभावित होने पी दिगो सड़क दुर्घटना प्रभाव करी मरमत संसद सवारी दुर्घटना बढ़े दुख व्यक्त करते दुर्घटना को खोजी केन्द्र बनाये महिला पहिरो को पूर्व तैयारी बारे जानकारी कराई सरकार अर्जी कर सांसद नारायण दत्त मिश्र डीएपी मल खरीद में भारत प्रति मेट्रिक टन 540 डलर में खरी खरब नेपाल 900 डलर तीन पन्ना का कारण बारे छानबीन कर सांसद युवराज शर्मा निरंशी खाने पानी शिक्षा स्वास्थ्य में गर्मी तथा विद्यालय अस्पताल सुर्खी जन्ने और मदिरा जन्ने पदार्थ को बिक्री नियंत्रण कर पन्ना विषय में उत्प्रेरक शिक्षा प्रणाली सुधार का आवश्यकता सांसद सुरेश कुमार आने मगर सांसद उठा गई जन सरकार के विषय में सरकार से जवाब लेने के लिए सुनने समय में मैं बैठक स्थान की चीज विरोध जाने दे रहा है।
0: राष्ट्रीय समाचार संग्रह हमार संदेश का समय उड़ाई लगल बा हमार संदेश उड़ाई से पहला मुख्य मुख्य संदेश बर्दिया को पास करीमा उद्योग तथा वाणिज्य फर्म हुकम से गुणस्तरीय पोस्ट तथा सेवा प्रवर्तन संबंधी कार्यशाला गोष्ठी निंजल और राष्ट्रीय सभा का आज वर्ष कचहरी में सांसद विकास निर्माण प्राकृतिक तत्व को सुशासन का निर्मित विषय में सरकार का ध्यान आकर्षण कर कुमार सन्देश सत्रह कार विन्यास 7 बजे नेपाली राजा कुमार सन्देश ने भैरवाथे तब समग्र समाचार कक्ष प्राप्त सहरिया गोरी शंकर संग सहरिया बिन्दु उमय कुमार विदाई छु रेडियो पूर्वाधि जय गुरुबाबा।

0: जैसे अपना सर पदक सर जो छो बाजक अपने पदमा सातरी विषय महाप्रमण पुजारी लग्न सर पदक से संबंधी विज्ञान तथा तीन पूर्ण प्रति आभारी घाटी
1: लक्ष्मण

0: माछा अनिवार्य सुरु गरे। अन्न गेडादुरी साग सब्जी फलफूल सहित फसल पूरक खानाले बच्चाहना तन्दुरुस्त गराए। पूरक खाना सँगसँग दुई वर्षसम्म स्तनपान जारी गरे।
1: रेडियो कुर्ताबा एफएमको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय पर्यासले जनहितमा जारी सन्देश।

0: tapi yang ini junk food, tetapi baca karena sodium beri gula muda mutu loko zukin berani rasa. Di suasana sangat leh yuta bikti dari 5 gram semua non sebab gano upaya kebude salah dia kosa.
1: Dia mitrupa itu rasa hik bayam le mutu susah bawa mutu kosa.
0: Sentuhan mana banyak tenaga sekarang proses kebun cinta setengah pada muka dongga mutu loko itu pasal sakit sah.
1: 40 persen kategori नियमित स्वास्थ्य जांच करो,
0: चीनी पदार्थ, मांसा मांसू कम खाओ, खाना में साक्षात सफल फल खाओ,
1: मध्यपान और धूम्रपान सेवन न करो,
0: स्वस्थ रहो, सुखमय जीवन जाओ।
2: रेडियो गुरुवाला एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश।

पढ़ाई के पनी वह मानसिक समस्या रहा पढ़ाई में असर पड़ने सका साथी को दबाव में होना आप रोशन पड़ा को पक्ष मानी गई करूं तनाव में